पर रस्ता खाली आकाश ते बदल छाए ने ठंडी ठंडी हवा वग रही बिजली चमक रही मन उदास है।

देखिया पर रास्ता खाली दिखिया कोई सुनिया लेके नहीं आया ते अखां विच जल भर आया अथरू किरण लग पे के हाली भी कोई सुनिया।

कैडी भागा वाली है, जिथे मेरा पुत पिता गुरु आप बैठे, उथे दे रहन वाले जीव किन्ने भागा वाले ने, जिन्हां दे कोल ओ गुरु प्यारा बैठा, ओ धरती ओ देश कैडे भागा वाला है, जिथे गुरु आप

नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा, क्यों को कड्ढे गहना। नानक बिनवै सो किछ पाइए, पुरब

भगवान जी कहने लगे भी सुनामिया कुछ खा रहे हैं
महाराज तो सुखीदा पता है इतने पता तू मेरी मां बैठी है मैनू कुछ देने वास्ते एवं गरीबा ना विरास ना कर भगवान जी विजुक कर कोई समय में भाव प्यारी साल संगत जैसे ने सुखाने लिए तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कह लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है महाराज तुम कि पता है भगवान जी कह लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो सुदामी ने कहा महाराज तुम्हें बड़े खुश तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर को ठंड लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है तो तुम्हें कहने बुझा कमरे तो उस वेले भगवान कृष्ण ने वचन कर दिता जाओ दलिद्रीय दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी जमीन जाओ दलिद्रीय तो पवित्र प्रभाव कीता है क्योंकि वन के खाना बंदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी खो के खाना गंदगी जरा खो के मैं कहता है उसका गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा हो संदीप ऋषि को पढ़ के विदेश भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खान कुछ भी दिता है कि सुशीला ने किया प्राणी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया हाँ पढ़ना भगवान को क्यों नहीं जाते आप भुखे से मरते जे भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्हें को क्यों नहीं जाते कुछ मिल जाएगा किस दिन चंगे मतीत हो जाए सुनाने लेके अपना गांव वाली घर तक तेरी ठीक है पर मित्र को मुझे शर्म यात्री शर्मता भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिखते हैं पित्र सुदामा दाल मित्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल की बाल सिखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर स्त्री का हक भी बड़ा जबरदस्त स्त्री अखेल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलदा गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन पिलाए एकी कह बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह उन्हें कोल मुलाकात होगी किस तरह उन्हें कोल पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलदा गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन पिलाए नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता सही कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी कहें जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला को अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वे किधर जाने जी मैं भगवान को मिल जाए पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता है पीछे हट कोई गल नहीं मैं अगे ही पता थी गरीबा कहना होंगे पे एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाइए भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र ठीक है वाह भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्रवत्ता रहे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू कि मित्र रोह के अच्छे लगा है दरबार मैं सच ही दरबार के बीज ला के सके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इसी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर खड़ोगे दरबार अंदर पहुंच गया
अगे भगवान कृष्ण जी बड़े सुंदर सिंहासन से बैठे रुक्मिणी से राधिका जी चरण चढ़ती हैं। दरबार में जाके नमस्कार की थी, मथा टेक के महाराज एक नवा तमाशा वेख आए। भगवान जी देखे है दरबार, वो केड़ा तमाशा? दरबार ने कहा महाराज अज एक नवे नमूने का आदमी थोड़े दरबार आए, दर पे थोड़े महिला ने मूहे अगे खड़ोते नवे नमूने की वजह आदमी इतक वेखे। पर हैरानी यह है कि वह कहता है मैं भगवान कृष्ण का मित्र। भगवान जी कह सा महाराज पता क्यों किया है, वह नाम की है? तो दरबार ने किया महाराज सुन कोई उजिया इंसान सी सब पता

तुझ गुरु मनुष्य हो देख रहे हो वसुधा को राम राम इंसान से नैना के दरवाजे की श्रोता है यार बिज बिज के असर हसन पही निगाह देना देख ले भगवान ने किया है दरबार उसका नाम भी पूछ लेना चाहिए दरबार ने क्या नाम भी दे क्या नाम है ज्वार खड़ा तुझको

पहला देर पर रखा चार परिक्रमा करके सुनामे उसे छाती सारा दिन मिसल पाई अजकल के दिन तक स्वाद पूरा है तो मित्र हूं तेरी स्वाद पूरा नहीं तो वो मित्र मुखाकृत भी कर लगे निंदा भी कर लगे जित दिन स्वाओ न उपजे तित दिन बोलन गम स्वाद आ गया मित्र सुदामे दिए प्रकरणा करके छाती मार लाया मान लेके आए तो जिस आसन से आप बैठे सब सुदामे ने बिठा सुनी तेरा जाओ मेरा मित्र आया है जल ले आओ सुदामे के चल को रुकमणी तेरा का पानी कैसे फिर भगवान कृष्ण सुदामे ने मिठे मिठे वचन कर सुदामे कितना चीज किसके एक बार करते थे तेरी हालत की होगी तेरी दिशा भी बन गई है ऐसे बिहार मित्रों एक कंटक जाल पड़े पद को तेरे पैर ठंडे चुके

ओंकार हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख तू सारिया ते मेर कर सारी सृष्टि ते मेर कर तू मालक है तू प्रतिपालक है तू राखा है सबे जी समा तू सारिया ते मेर कर तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर सारे अनु समत बख्श जगत सड़ रहे है अगां लगिया हुई ने तू कृपा कर तू मालक है सारिया ते कृपा कर जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित दुआरे उबरे जिते लेहो ओबा तू सारिया ते मेर कर सारे तेरे ने तू सारिया की कृपा कर ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए ये पदार्थ सारिया नू दे सारिया ते कृपा कर दुख दलिद्र भन कर सारिया का दुख दूर कर दलिद्र ये सब दूर कर तू सारिया ते मेहर कर मेहर कर।

शिम्बरस वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख च पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे ता लोक परलोक

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहा जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी शोध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण किया सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ।

ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

चौंकी दा पावा टूट गया ते मैं अपना पैर थले दे दिता कि मता आप जी दा ध्यान ना भंग हो जाए ते मेरे पैर दे विचों ए खून निकल रहा है जिद नाल पानी दा रंग लाल हो गया। तो गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे बेटा पानी मंग तेनू की चाहिए। क्या पिता जी आप दा दिता बहुत कुछ है, उस अकाल पुरख दा दिता बहुत कुछ है, किसी चीज की इच्छा नहीं। महापुरुषा दे तीन वचन होंदे ने। तीसरी वारी क्या बेटा कुछ मंगो, बड़े प्रसन्न।

कि एक घर की गद्दी घर विच रहे। तां गुरु साहिबां ने कहा ए चीज मिलता जाएगी पर इहदे वास्ते देना बहुत कुछ पवेगा, सारा सरबंस वारना पवेगा। अगर मंजूर है तां ए जोत ए गुरगद्दी घर विच रह सकती। क्या पिता जी जो मर्जी हो जाए मैं सब कुछ कुर्बान कर देंगी, पर इस सत्संग की सेवा यह साडे परिवार के कोल रवे। ता उस वक्त गुरु साहिबां ने कहा कि बेटा देख लो तत्तियां लोहां ते बहना पएगा, सिरां ते गर्म रेते पुआने पैणगे, किधरे सिर भी कटाना पएगा, किधरे बच्चे नीहां विच चनवाने पैणगे, किधरे उन्हां दीआं छातियां गोलियां तीरां दे नाल छलनी करवाणी।

गुरु अमरदास पातशाह ढुआंदे गए। आखिर प्रसन्न होए, संगत बुलाई, अपनी जगह गुरु रामदास नु सिंघासन ते बिठा के गुरु अमरदास पातशाह ने परिक्रमा की थी। पांच पैसे नरेल रख के मथा टेकिया। बाबा बुढ़ा जी ने मथे ते तिलक लाया ते सारी संगत नु गुरु अमरदास पातशाह ने हुक्म किया कि आज तू बाद रामदास इस गद्दी ते बैठणगे और आप सारिया ने इन्हां नू गुरु नानक दा रूप समझना है। तो सोईये विच कह रहे ने समरथ गुरु ने सिर ते हथ रखे आ ते सचमुच किन्नी बख्शिश।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी। जय प्रसाद छती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सबको माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गए मन पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखे। जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने कर्ण नाद जय प्रसाद पेखे विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु ते